ट्वेंटी 90.4 के एल ई कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: इदानीम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्यतनविषयः अस्ति कालपठनम्। काल का पठन करते हैं। संस्कृत भाषा में भी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। अद्य संभाषणार्थं मया सह मम सखी गीता अस्ति। आइए संस्कृत सुनेंगे, संस्कृत बोलेंगे। आज हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में थोड़ा सीखेंगे। आज संभाषण के लिए मेरे साथ मेरी सखी गीता है। अद्य सोमवासरः अस्ति। आज सोमवार है। श्वः मंगलवासरः भविष्यति। कल मंगलवार होगा। यः रविवासरः आसीत्। कल रविवार था। आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा और कल रविवार था। तो ये बोलेंगे कैसे? अद्य सोमवासरः अस्ति। श्वः मंगलवासरः भविष्यति। यः रविवासरः आसीत्। सप्ताहे सप्तवासराः सन्ति। सप्ताहे सप्तवासराः सन्ति। ते के? तर्हि सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। जैसे कि अपने हिंदी भाषा में भी वही है। सोमवासरः बोलिए संस्कृत में या सोमवार बोलिए, दोनों ठीक है। अद्य याने आज, श्वः याने कल, परश्वः याने परसो, प्रपरश्वः याने नरसो। तो सुनिए, अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः, परश्वः बुधवासरः, प्रपरश्वः गुरुवासरः। स्पष्टम्? उत्तमम्। अब भूतकाल में जाते हैं। अद्य सोमवासरः, यः रविवासरः। यः याने कल, जो बीत गया है। आज सोमवार है, कल रविवार था। परह्यः शनिवासरः, प्रपरह्यः शुक्रवासरः। पुनः एकवारं भूतकाल के शब्द बोलते हैं। अद्य सोमवासरः अस्ति। आज सोमवार है। यः रविवासरः आसीत्। कल रविवासर अथवा रविवार था। अद्य सोमवासरः अस्ति। यः रविवासरः आसीत्। परह्यः शनिवासरः आसीत्। प्रपरह्यः शुक्रवासरः आसीत्। तर्हि भविष्यत्काल के लिए भविष्यति, भूतकाल के लिए आसीत् और वर्तमान काल के लिए अस्ति। अब थोड़ा प्रश्नोत्तर सुनते हैं, उससे अभ्यास होगा। आगच्छन्तु अभ्यासं कुर्मः। गीता भगिनी यदा उत्तरं वदति तदा भवन्तः अपि उत्तरं वदन्तु। गीता भगिनी, अद्य सोमवासरः अस्ति। अद्य कः वासरः?
1: अद्य सोमवासरः।
0: उत्तमम्। अद्य सोमवासरः अस्ति, श्वः कः वासरः भविष्यति?
1: श्वः मंगलवासरः भविष्यति।
0: उत्तमम्। अद्य सोमवासरः अस्ति, यः रविवासरः आसीत्। यः कः वासरः आसीत्?
1: यः रविवासरः आसीत्।
0: उत्तमम्। तर्हि अद्य सोमवासरः, श्वः
1: मंगलवासरः,
0: परश्वः
1: बुधवासरः,
0: प्रपरश्वः
1: गुरुवासरः।
0: उत्तमम्। अद्य सोमवासरः, यः
1: रविवासरः,
0: परह्यः
1: शनिवासरः,
0: प्रपरह्यः
1: शुक्रवासरः।
0: उत्तमम्। तर्हि सप्ताहे सप्तदिनानि सन्ति, सप्तवासराः सन्ति। अब अस्ति भविष्यति का दूसरा उपयोग देखते हैं। जैसे कि बालकः उत्तमः अस्ति, एषः वैद्यः भविष्यति। बालक अच्छा है, यह लड़का अच्छा है, वह वैद्य बनेगा। गगने मेघः अस्ति, वृष्टिः भविष्यति। आकाश में मेघ है तो क्या होगा? वृष्टि होगी। एषः अंकुरः अस्ति, वृक्षः भविष्यति। तर्हि अस्ति भविष्यति का अभ्यास ऐसे होता है। थोड़ा प्रश्नोत्तर करते हैं। बालकः उत्तमः अस्ति, एषः वैद्यः भविष्यति। एषः कः भविष्यति?
1: एषः वैद्यः भविष्यति।
0: मेघः अस्ति। गगने कः अस्ति?
1: गगने मेघः अस्ति।
0: तर्हि किं भविष्यति?
1: वृष्टिः भविष्यति।
0: उत्तमम्। एषः अङ्कुरः अस्ति। वृक्षः भविष्यति। तर्हि एषः कः?
1: एषः अङ्कुरः।
0: उत्तमम्। अङ्कुरः किं भविष्यति?
1: अङ्कुरः वृक्षः भविष्यति।
0: बहुत खूब। अब भूतकाल के लिए अस्ति आसीत् इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। शृण्वन्तु। एषः बुद्धः। बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। तो फिर से सुनिए। एषः बुद्धः। बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। एषः वृद्धः। वृद्धः पूर्वं बालकः आसीत्। एषा धेनुः। धेनुः पूर्वं वत्सः आसीत्। समझ में आया? तो प्रश्नोत्तर करते हैं। एषः बुद्धः। बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। बुद्धः पूर्वं कः आसीत्?
1: बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्।
0: एषः वृद्धः। वृद्धः पूर्वं बालकः आसीत्। वृद्धः पूर्वं कः आसीत्?
1: वृद्धः पूर्वं बालकः आसीत्।
0: उत्तमम्। एषा धेनुः। धेनुः पूर्वं वत्सः आसीत्। धेनुः पूर्वं कः आसीत्?
1: धेनुः पूर्वं वत्सः आसीत्।
0: उत्तमम्, अत्युत्तमम्। तो आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने अस्ति, आसीत, भविष्यति इन शब्दों का उपयोग किया और सप्ताह के सात वार भी सीख लिए। आज अंत में प्रश्न पूछते हैं, उत्तर जरूर भेजिए। प्रश्न है, कल कौन सा वार था? अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्।
2: श्री गणेशाय नमः।
3: श्री गणेशाय नमः।
2: आरामः कल्पवृक्षाणां।
3: आरामः कल्पवृक्षाणां।
2: विरामः सकलापदां।
3: विरामः सकलापदां।
2: अभिरामः त्रिलोकानां।
3: अभिरामः त्रिलोकानां।
2: रामः श्रीमान् सनः प्रभु।
3: रामः श्रीमान् सनः प्रभु।
2: तरुणौ रूपसंपन्नौ।
3: तरुणौ रूपसंपन्नौ।
2: सुकुमारौ महाबलौ।
3: सुकुमारौ महाबलौ।
2: पुण्डरीकविशालौ विशालाक्षौ।
3: पुण्डरीक विशालाक्षौ।
2: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ।
3: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ।
2: फलमूलाशिनौ दान्तौ।
3: फलमूलाशिनौ दान्तौ।
2: तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
3: तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
2: पुत्रौ दशरथस्यैतौ।
3: पुत्रौ दशरथस्यैतौ।
2: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।
3: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।
2: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां।
3: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां।
2: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां।
3: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां।
2: रक्षः कुलनिहन्तारौ।
3: रक्षः कुलनिहन्तारौ।
2: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ।
3: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ।
2: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा।
3: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा।
2: वक्षया शगुनिशङ्गसङ्गिनौ।
3: वक्षया शगुनिशङ्गसङ्गिनौ।
2: रक्षणाय मम रामलक्ष्मणवग्रतः।
3: रक्षणाय राम लक्ष्मणावग्रतः।
2: पति सदैव गच्छताम्।
3: पति सदैव गच्छताम्।
2: सन्नद्धः कवची खड्गी।
3: सन्नद्धः कवची खड्गी।
2: चापबाणोधरो युवा।
3: चापबाणोधरो युवा।
2: गच्छन् मनोरथोऽस्माकम्।
3: गच्छन् मनोरथोऽस्माकम्।
2: रामः पातु स लक्ष्मणः।
3: रामः पातु स लक्ष्मणः।
2: रामो दाशरथिः शूरो।
3: रामो दाशरथिः शूरो।
2: लक्ष्मणानुचरो बलि।
3: लक्ष्मणानुचरो बलि।
2: काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः।
3: काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः।
2: कौसल्येयो रघुत्तमः।
3: कौसल्येयो रघुत्तमः।
0: रामरक्षा स्तोत्र पठनम् बहु सम्यक् अभवत्। कल अभ्यास में प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न था? हाँ, प्रश्न था, आप वेणु ध्वनि क्यों सुनते हैं? बहुत से उत्तर आए हैं, मगर बहुत प्यारा उत्तर तो था शाम्भवी जी का। उन्होंने लिखा है, संस्कृतम पठितुम अहम वेणु ध्वनिम श्रुणोमि। बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा है उन्होंने। धन्यवाद है शांभवी जी, आपके फ्रेंड्स को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। धन्यवाद, पुनर्मिलामः। इदानीं शांति मंत्रेण कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: सबक का महत्व. जब अचानक नुकसान पराजय हो जाए या फिर खुद से कोई गलती हो जाए या कोई धोखा दे दे तो दिल टूट जाना जायज है, परंतु इससे क्या होगा? हो गया सो हो गया, बीती बातों का चिंतन करने से भला क्या लाभ? ये तो सांप जाने पर लकीर को पीटते रहना है. इससे तो अच्छा बीती बात से सबक लिया जाए और फिर से जिंदगी को सवारा जाए. जी हाँ, बीते समय को फिर से लौटा लाना या बिगड़ी बात को पुनः जैसी की वैसी पा लेना असंभव है, लेकिन गलती को न दोहराना, उसके लिए सावधान रहना, भविष्य में होने वाले अनेक हानियों से खुद को बचाना, यही सबक लेना है. विपरीत बातों में सकारात्मक सोच रख कर कुछ सीखना, नुकसान में भी भविष्य के सफलता के लिए ज्ञान प्राप्त कर लेना ही उसे पाठ पढ़ना है. जीवन में वो ही आगे बढ़ता है जो हर अच्छी बुरी बात से कुछ सबक ले लेता है. सबक या पाठ बुद्धिमानों के लिए गुरु के समान है. जो विजयी बनने के गुण पैदा करता है वो आने वाले समय के लिए तैयार करता है, यानी आंतरिक शक्तियों को जमा करने के लिए प्रेरित करता है. सबक एक कुशल प्रशिक्षक है जो जीवन की कंटीली राह को भी आसान बनाता है और उस पर चलना भी सिखाता है. ये एक सच्चा दोस्त भी है जो बुरे वक्त में हमेशा साथ देता है. सबक लेने वाला अनेक ठोकरों से बच जाता है. गलती से सीख लेना और भविष्य में सदा सदा के लिए अनेक धोखों से बचना ही वास्तव में दूरदर्शिता है. दूरदर्शी ही अपनी योजनाओं को साकार करने में सक्षम होता है, यानी सबक वो रोशनी है जो घनघोर अंधेरे में भी आशा की किरण देती है. सबक नया जीवन, नई क्षितिज, नया आसमा देने वाला एक जादुई और करिश्माई शब्द है सबक. अतः हर अच्छे बुरे नुकसान फायदे से सबक लीजिए और जिंदगी की राह को आसान कीजिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा

0: बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: यह योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित अपराध गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी।

0: है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एलई कनसु।
5: KLE ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿ 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, 100+ ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000+ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ. ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. NAC A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.
4: माहेश्वरी अंध मुला मुलींच्या शाळेमध्ये 2026-27 या नूतन वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पहिली ते 10वी पर्यंतच्या अंध विद्यार्थ्यांसाठी अत्युत्तम वसतिगृह शाळा असून गरीब आणि ग्रामीण भागातून आलेले 120 विद्यार्थी येथे शिक्षणाचा सध्या लाभ घेत आहेत. या शाळेमध्ये इयत्ता 1 ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत वस्ती, जेवण यासह ब्रेल लिपीमध्ये शिक्षण देण्यात येते. शिक्षणाबरोबरच संगीत, व्यावसायिक शिक्षण, संगणक प्रशिक्षण, चलनवलन प्रशिक्षण, खेळ पोहण्याचे प्रशिक्षण, ब्रेल पाठ्यपुस्तके व औषध उपचाराची सोयही आहे. विशेष म्हणजे गेल्या 38 वर्षांपासून शाळेचा SSLC परीक्षेचा निकाल 100% येतोय. तेव्हा आपल्या ग्रामपंचायत किंवा आसपासच्या गावांमध्ये अंध मुले आणि मुली आढळल्यास त्यांना आमचा पत्ता देऊन आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी प्रेरित करा. अंध मुलांच्या शिक्षण व उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रयत्न करून आपले अमूल्य योगदान द्यावे. प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे, विद्यार्थ्यांचा जन्म दाखला, अपंगत्वाबद्दल वैद्यकीय प्रमाणपत्र, UDID कार्ड, ID size 4 photo, stamp size 4 photo, उत्पन्नाचा व जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, आई वडील आणि विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड, जॉईंट बँक पासबुक अर्जासह शाळेत भेटावे. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा माहेश्वरी अंध मुलांची शाळा, नेहरू नगर, बेळगाव येथे. फोन नंबर आहे 9448154235 आणि 7259570595.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। भाषा संगम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि जनरल न्यूट्रिशन है। दोस्तों, हम जो खाते हैं, हमारे प्लेट में जो खाना रहता है वो कितना हेल्दी है हमें पता नहीं रहता, जबकि दिन भर में हम काफी चीजें खाते रहते हैं, बट हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है वो भी हम जानते नहीं है। तो इसी के बारे में हमें ये सभी बातें समझाने के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद है सुप्रजा यस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच है। उसी के साथ साथ वो ओन योर हेल्थ की फाउंडर भी है। मैडम वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मनीषा जी।
0: आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली डेली रूटीन में हमें काफी हम खाते रहते हैं, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, बट कौन सी चीज से या फिर क्या हम खाते हैं उससे हमें कितने हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम जानते नहीं है। हालांकि सब लोग बोलते हैं कि आपको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम करने चाहिए, बट वो कौन से फल में रहे या फिर वेजिटेबल में रहे, वो कौन से इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। तो ओवरऑल हम जनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल न्यूट्रिशन मीन्स क्या रहता है?
1: तो जैसे आपने बोला, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत डीप है, पर लोगों को यही लगता है कि न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कि कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, इतना ही लोगों को समझ में आता है। और ये इसके लिए भी होता है क्योंकि हम इतना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि लो कार्ब्स मतलब कम कार्ब्स, हाई प्रोटीन, लो फैट या कीटो डाइट या ये वो, मतलब अलग अलग अलग अलग तरीके का ना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इन चीजों के बारे में। बट एक्चुअली जो न्यूट्रिशन की बात करें तो ब्रॉडली कैसे बोलते हैं कि हमारा जो खाना है, जो बॉडी में जो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इन पांच चीजों के बारे में मेनली फोकस रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है क्योंकि उससे मोटापा होता है।
0: एग्जैक्टली।
1: बट लोग ये नहीं समझते हैं कि जो हमारे कण, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, हर एक सेल को जो ऊर्जा या एनर्जी का जो जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। तो हमारा जो बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरी है। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है या जो क्षमता है, वो जो भी खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो इवेंचुअली मतलब एट द एंड वो जाके कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में ही होता है। क्योंकि बॉडी का जो अब्सॉर्प्शन है, जैसे मैंने बोला हर सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज होती है। तो कोई भी खाना जो खाते हैं जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके सेल के अंदर जाके वो ऊर्जा पैदा करती है। तो वही ऊर्जा से हमें अपना सारा एक्टिविटीज जो काम है वो सब हम कर सकते हैं। तो कार्ब्स आर बैड, कि कार्ब्स खराब है, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। कार्ब्स हमारा जरूरी है, हमारे लिए फ्यूल है, हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। कार्ब्स जो सबसे एफिशिएंट मतलब जो सबसे ईजिली जो हमें बॉडी को मिल जाता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बॉडी यूज करती है, जब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं तो नेक्स्ट जो होता है वो फैट होता है, जिसको बॉडी बर्न करती है।
0: अच्छा।
1: बट फैट में क्या है, जो कैलोरीज है, जैसे बहुत लोग समझते हैं ये टर्म कैलोरीज, राइट? तो कैलोरीज मतलब अगेन कैलोरी जब ब्रेक डाउन का मतलब होता है एनर्जी देना, ग्लूकोज देना। तो कार्ब्स में जो हर एक ग्राम पे एक कार्बोहाइड्रेट का वो 4 कैलोरीज आता है, बट वही चीज 1 ग्राम फैट का अपने को ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज आता है। तो बॉडी का जो रिजर्व जो रहता है ना वो फैट होता है। अगर बॉडी कार्ब्स नहीं मिलता है, जो इजिली वो नहीं ले पाता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो होल कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन जो है वो बहुत मेहनत के साथ बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर पाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अलग से रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन बहुत इनएफिशिएंट मतलब बिल्कुल ही लास्ट, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, अगर बॉडी को ऐसा लगता है तब जाके वो फिर प्रोटीन को यूज करता है एनर्जी के लिए। क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसके लिए फोकस हमारा होना चाहिए कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, ना कि, हाँ ये एक चीज है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज किसी भी फॉर्म में हम लोग खाएं, एक्स्ट्रा जो बॉडी को जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा हो वो जाके फैट के जैसे स्टोर होता है।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स को इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब दोनों सेम नहीं है। कैलोरीज जो है वो जो खाना होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, बट खाना जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ऐसे करके अलग अलग पदार्थ होते हैं उसमें। और ये भी लोगों को लगता है कि राइस खाने से हम मोटा होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, 100%. और आलू खाने से हम ठीक नहीं है क्योंकि आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। यू नो, ये भी बहुत सारा एक मिथ है, लोगों को लगता है कि ये गलत है, बट एक्चुअली देखा जाए तो कुदरत ने ना कभी भी खाने को एक, जैसे हमारा बॉडी भी जैसा है कि वो पूरा अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ है, कोई एक ऐसा लिवर अलग से, हार्ट अलग से नहीं है, सब जॉइंट है। वैसे ही कुदरत ने भी खाने को, जैसे चावल हो गया या आलू हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो है बट उसके साथ साथ और भी पौष्टिक पदार्थ है उसके अंदर, तो इसे ब्रेक डाउन करके कभी भी खाने को प्रोटीन फैट ऐसा देखना बहुत गलत हो जाता है। हमें ये फोकस रहना चाहिए न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से कि भाई मैं कितना एक्सेस में खा रहा हूँ या खा रही हूँ, वो एक फोकस रहना चाहिए कि ज्यादा ना खाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा जो भी आता है बॉडी के अंदर वो फैट में स्टोर होता है। तो ये ध्यान में रखे कि जो भी मैं खाऊं जितना कुदरती तरीके से खाऊं उतना अच्छा है मेरे लिए। इसलिए फ्रूट्स,
0: अच्छा
1: फ्रूट जो आता है वो एक्चुअली, फ्रूट देखा जाए तो मीठा रहता है टिपिकली जो है, जैसे सेब खा लिया तो सेब में फाइबर बहुत सारा है। सेब एक्चुअली, फ्रूट जो है वो प्योर शुगर्स है, मतलब वो बहुत जल्दी ऐसा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, बट उसके साथ जैसे मैंने बोला फाइबर है, तो फाइबर के साथ साथ बहुत सारे जो बाकी न्यूट्रिएंट्स या बाकी जो पौष्टिक पदार्थ है वो भी जुड़े हुए रहते हैं।
0: करेक्ट।
1: तो हम एप्पल ज्यादा नहीं खा सकते या कोई भी फ्रूट ना एक या दो खा सकते, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। ओवर ईटिंग जो बोलते हैं ना, हम इन कुदरती पदार्थों से हम लोगों को ओवर ईटिंग होता नहीं है। ओवर ईटिंग होता है जब हम लोग कुछ मैनमेड कुछ निकाल देते हैं, कुछ चीजें इसमें से ऐड कर लेते हैं, तो उसके वजह से क्या है कि हमारा जो वायरिंग है,
0: अच्छा,
1: वो थोड़ा चेंज होके हमें लगता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं। उस तरीके से हमारा कैलोरीज जो है वो बढ़ जाता है और हमें ये लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है, प्रोटीन खराब है। बट फोकस सिर्फ ये रहना चाहिए कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सारे खाने में होता है। जैसे मैंने बोला आलू में भी प्रोटीन होता है, फैट भी होता है।
0: अच्छा,
1: राइस खराब नहीं है बट जिस तरीके का राइस खाते हैं हम लोग, इतना पॉलिश्ड, इतना वाइट, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रख के खाने को तोड़ के ना खाने, बट जैसा हमारा प्लेट होता है कि दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, तो ये थोड़ा अच्छे से मात्रा में हम लोग बैलेंस डाइट जो बोलते हैं उस हिसाब से अगर हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे खाए, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए या पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, बट वो सब जितना कम कर सकते उतना अच्छा है, बट नेचुरली जो खाना बनता है घर के अंदर, जो पौष्टिक मम्मियाँ या फिर दादियाँ जो घर पे बनाती है या हम खुद जो बनाते हैं, मतलब नॉट जस्ट वुमेन बट हाँ प्रैक्टिकली जो बहुत सारे आजकल मर्द भी खाना अच्छे से बनाते हैं, तो घर का खाना होल तरीके से, बैलेंस तरीके से, कि दिन में फल भी हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गए, दाल चावल, यू नो, ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर खाना रेगुलरली खाते रहे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये ब्रेकडाउन जो हम लोग बात करते हैं इसका जरूरत नहीं पड़ता है।
0: करेक्ट। अभी काफी अच्छी तरह से आपने समझाया है, बट अभी कैसे हुआ है, जैसे आपने बताया कि अलग अलग टाइप के डाइट आए हैं और एक फैशन की तरह लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसके साइड इफेक्ट्स उनको पता नहीं रहेंगे शायद, या फिर उतनी डीप स्टडी उन्होंने की नहीं होगी, बट इसको लेके, मतलब अभी जो फैशन या ट्रेंड चल रहे हैं अलग अलग डाइट के, उसको लेके कुछ साइड इफेक्ट्स भी उनको आगे चल के होंगे क्या?
1: डेफिनेटली। देखो, डाइट जो चीज है, वो वर्ड डाइट ही अगर देखा जाए कि लोगों को लगता है मैं डाइट करूंगा तो, या मैं डाइट करूंगी तो मेरा वेट लॉस होगा, लोग टिपिकली डाइट की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कैलोरीज कम करना है। बट डाइट जो है वो एक महीना दो महीना काम करता है। आप डाइट लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आप खाना खाते हैं बट आप डाइटिंग लाइफ लॉन्ग करते हैं क्या? कभी नहीं कर पाते हैं,
0: नहीं हो पाता। करेक्ट।
1: That is why diets do not work. इसलिए हम कभी भी डाइट करके, ये जो टर्म है डाइट जो है वो एवरी डे होना चाहिए, मतलब हमारा जो खाना है रेगुलर वो डाइट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बदकिस्मती से ना डाइट को हमने एक ऐसा फैंसी वर्ड

0: जो मेरा है वो कितना पौष्टिक था से भरा है कि उसमें सारे जो मुझे न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी को जो कुदरती तौर से जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, जो पौष्टिकता की जरूरत है, वो मुझे मिल रहा है। ये फोकस रहना चाहिए, ना कि मैं ये डाइट करूं, क्योंकि बहुत सारे डाइट्स रिसर्च भी है कि लॉन्ग टर्म कुछ कुछ डाइट्स जैसे है उसमें डेफिशिएंसीज भी हो सकते हैं, फिर उसमें एक्सेस करने के वजह से जैसे हाई फैट डाइट हो गया या लो कार्ब डाइट हो गया। यू नो हाई फैट डाइट में क्या है, लॉन्ग टर्म जैसे जाके एथरोस्क्लेरोसिस की हार्ट के इश्यूज, बिकॉज फैट बहुत ज्यादा होता है बॉडी में। टेम्पररी इनिशियली जो है वो वेट लॉस होता है, बट एक टाइम के बाद रिसर्च आजकल निकलने लगा है कि हाई फैट डाइट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब दिल की दौरे पड़ने का या एथरोस्क्लेरोसिस की आर्टरीज में जाके क्लॉग होने का, फैट डिपॉजिट होने का, तो ये चांसेस ज्यादा है। तो लोग करते हैं डाइट्स, एक साल भी करते हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखती है इन चीजों को। और हमारी बॉडी भी कैसा है ना कि ये बहुत सहनशीलता है अपनी बॉडी में, वो इतना इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है। यू नो हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करते रहता है कि मैं सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढूं, और इसके लिए हमारी जो बीमारियां है वो बाद में प्रकट होती है कि इनिशियली जैसे ही खाते हैं वैसे ही बीमारी नहीं होती है।
1: करेक्ट।
0: एक थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, कहीं ना कहीं छोटे छोटे छोटे छोटे होके फिर कुछ बड़ा बड़ा बीमारी जाके निकलता है। यू नो तो डाइट्स कभी काम नहीं करता है। तो मेरे लोगों का यही कहना है, और मेरे प्रैक्टिस में भी मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो मैं डाइट नहीं दूंगी आपको, आपका आज का जो खाना है, जो रोज आप खाते हो, उसको आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हो। आप चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, बट उसी खाने की थाली को आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। ना कि अच्छा मैं लो फैट करूंगी या हाई फैट करूंगी, लो कार्ब करूंगी जिससे मेरा वेट लॉस होगा, या तो ऐसे बहुत सारे जो फैट डाइट्स जो बोलते हैं ना, कि इसमें मुझे तो विश्वास नहीं है। लोग करते हैं, लोगों को बेनिफिट होता है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता ही है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है, मतलब जिंदगी भर आप नहीं कर पाओगे। दूसरा जो है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो बेस्ट मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आपका जो रोजमर्रा का खाना है, तीन वक्त आप खा रहे हो, तो वो तीन वक्त का खाना जो है उसको आप ज्यादा पौष्टिकता कैसे बनाए, क्योंकि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पौष्टिकता है, पौष्टिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट है।
1: करेक्ट।
0: तो उसी पे फोकस हमारा होना चाहिए।
1: आज का जो टॉपिक है जनरल न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके लिए जो नॉर्मल लोग हैं जिनको किसी भी टाइप की बीमारी नहीं है, उन लोगों के लिए हम कैसे बताएं कि जैसे अभी अभी आपने बोला कि उनकी थाली अच्छे कैसे हो जाए, उस पे मैं काम करती हूं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे?
0: गुड क्वेश्चन। और ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स को भी जो फोकस नहीं रहता है, और ये एक वर्ड है फाइबर, जो फाइबर जो टर्म है ना, इसको क्या रेशा बोलते हैं। आप कोई भी पत्ते को आप फाड़ोगे तो एक स्ट्रिंग निकलता है एक ना, तो वो फाइबर होता है। कि आप एप्पल को जब चबाते हो तो वो जो बाइट एक होता है, एक जो आवाज आती है आपको क्रंच करके, वो फाइबर के वजह से है। तो ये जो है ये हमारे खाने में मिसिंग है, जो रोजमर्रा का खाना है हमारा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, राइस खराब नहीं है, व्हाइट राइस जिस तरह से हम लोग राइस को खाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके वजह से क्या है, क्योंकि हम चावल को या अनाज में से पूरा उसका जो फाइबर और पौष्टिक तत्व है वो सब निकाल के हम लोग खा रहे हैं, तो इसके वजह से चावल, आज का जो हम चावल खा रहे हैं वो खराब हो रहा है। सदियों से, मतलब आप देखा जाए जनरेशन एंड जनरेशन से हमारा जो प्राइमरी खाना है वो चावल ही है। बट चावल के साथ साथ हम बहुत सारे और चीजें खाते थे, चावल हमारा इतना ज्यादा नहीं होता था। आज आप थाली में अगर किसी के भी देखो तो चावल ऑलमोस्ट 3/4 पोर्शन जो है वो चावल या बाकरी या रोटी या जो भी है, यू नो जवार हो, कुछ भी हो, ग्रेन हो जाता है, अन्न जो हो जाता है ना, तो वो ज्यादा होता है। और जो सब्जी हो गया, दाल हो गया, या कोई और भाजी हो गया, या जैसे यू नो ये स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीजें, चटनियां हो गई, तो ये सारी चीजें बिल्कुल तरकारी जो है थाली में ना, तरकारियां कम हो गई है। तो हमें सिर्फ ये फोकस लाना है कि जो पुरानी तरीके से जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पहले जैसे खाते थे, उस पे थोड़ा फोकस रखें कि ज्यादा तरकारी लाए, भाजी तरकारी जो है, साग के पत्ते जैसे हरी पत्तियां की, पालक हो गया, शेपू हो गया, मेथी हो गया, रोज एक ना कोई एक पत्ती किसी फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में या रोटी के अंदर या फिर दाल में ऐसे मिला

0: ये खाओ। फिर एक फ्रूट तो एटलीस्ट एवरी डे, कोई भी फल जो सीजन में है वो कुछ ना डेली एक फ्रूट इंक्लूड करे, क्योंकि कुदरत जो ये कलर्स कलरफुल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, इसमें बहुत पौष्टिक तत्व है।
1: अच्छा,
0: ये पौष्टिक तत्व के वजह से ही ये कलर्स आ रहे हैं। तो जो लाल है, हरा है, पीला है, हम अगर फोकस इन चीजों पे करें तो फिर हमें ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। रोज जो थाली है, तीन वक्त का खाना जो हमारा है, अगर इन थोड़ा कलर्स पे फोकस करें, ये जो फाइबर जो मैंने वर्ड यूज किया ना, जो रेशा होता है खाने के अंदर, इस पे अगर हम फोकस करें ना, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली थाली जो है वो बेहतर होगा, हमारा जो सेहत है वो इम्प्रूव होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 30-40 साल में मैंने नोटिस करा है कि हमारा जो खाने में फाइबर निकल गया है, सब कुछ हम लोग बहुत रिफाइंड तरीके से खा रहे हैं। तो उसके वजह से क्या है कि बीमारियां भी बहुत ज्यादा रिफाइन होके आ रही है। पहले डायबिटीज बहुत कम लोगों में होती थी, अभी डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो डायबिटीज है, मतलब यू नो दुनिया में। इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, पॉपुलेशन में तो ज्यादा है ही है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ बीमारी भी सबसे ज्यादा है।
1: करेक्ट।
0: तो ये इसके लिए हुआ है, ना कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से, बाकी फाइबर निकाल दिया गया है हमारे खाने से। तो जो रोजमर्रा का खाना है उसको सेहतमंद बनाने के लिए फोकस ये करें कि फैट भी कट डाउन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, फैट के वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज आते हैं बॉडी में, तो हमारा फैट भी जो है वो कंजम्पशन जो हम खाने में जो लाते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि तले हुए खाने जो है कभी कभार हम लोग करते थे, कि मौसम बदल गया हो, बारिश हो रही है, थोड़े पकोड़े खा लिए।
1: हाँ।
0: आज क्या है, पकोड़े हम लोग स्नैक में हर रोज खाते हैं, पकोड़े समोसे चले, मतलब ये ना जो चलता ही रहता है। और दूसरा भी एक हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ गया है कि बोर होता है तो हम लोग खाते हैं, कि और कुछ करने को नहीं है इसके लिए चलो कुछ है खाते हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है खाते हैं। हम लोग ना वो पूरा जो शिफ्ट हो गया है खाने की तरफ, खाने को हम लोग एक कंफर्ट की तरह देखते हैं, ना कि ऊर्जा या एनर्जी देने वाली चीज। जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही ज्यादा हम लोग खाने पे फोकस दे रहे हैं। तो जहां हम लोग शायद दो वक्त का खाना खाते थे, एक मुहावरा होता है ना कि दो वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है, तो वो एक्चुअली दो वक्त ही जरूरी है बॉडी के लिए।
1: पर इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है ना, तो लोगों को उतनी अहमियत नहीं रही है।
0: करेक्ट। तो खाना जो है, इंग्लिश में एक फ्रेज है जहाँ मैंने पढ़ा था कि हम लोग ओवर फेड है बट अंडर नरिश्ड है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो खाना बहुत है, जैसे आपने बोला हर जगह देखो खाना तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ फॉर्म में मिल जाता है, बट जो बॉडी को जो नरिशमेंट है, जो पौष्टिकता मिलना है वो नहीं मिल रही है, इसके लिए वी आर अंडर नरिश्ड। तभी हमको बीमारियां भी हो रही है, मोटापा भी हो रहा है, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो मिल रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए अपने को, बट क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रहे हैं। और क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है, जो बाकी के पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें खाना ज्यादा है बट जो जरूरी है वो नहीं मिल रहा है, तो ओवरफेड बट अंडर नरिश्ड है, तो इसके लिए मोटापा, फिर बीमारियां एक के बाद एक, कुछ ना कुछ यू नो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सिर्फ दो चीजों पे मैं फोकस करूंगी कि एक फ्रूट एवरी डे, कि भले ही आप स्नैक में खा रहे हो वो पकोड़ा समोसा खाने के बजाय, आप एक फ्रूट ले आओ। दूसरा जो है कि साग के जो पत्ते हैं, एक हरी सब्जी या दाल में, कोई भी फॉर्म, चटनी फॉर्म में या पराठे में, किसी भी फॉर्म में आप साग के पत्ते लाएं। और जो चावल या रोटी का जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम करके तरकारी भाजी का जो क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ा दें। और ऑटोमेटिकली अगर तेल को थोड़ा कम कर ले, रिफाइंड जो हम लोग तेल में जितना तले हुए पदार्थ और फिर खाने में भी कितना ज्यादा तेल जो यूज होता है, तो वो प्योर फैट है, मतलब सिर्फ उसमें ना एक्स्ट्रा कैलोरीज है, तो हमें जरूरत नहीं है उतना, तो वो थोड़ा कम कर ले। तो ऑटोमेटिकली आप इसको हर मील में ये फोकस अगर लेके आएंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले एक मील से स्टार्ट करें कि चलो ब्रेकफास्ट मेरा मैं और हेल्दी कैसे बनाऊं, वही पोहा खाओ, बट पोहे में एक चार वेजिटेबल्स डाल के खाओ, थोड़े स्प्राउट्स डाल के खाओ। अगर वही पराठा खा रहे हो तो पराठे में तेल कम कर लो, या घी मत डालो, या बहुत कम घी में बनाओ, अच्छे से थोड़ा फिलिंग ज्यादा रखो। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम जो डेली खाना है उसको हम सेहतमंद बना सकते हैं। तो ये फोकस एक वर्ड पे मैं बोलूंगी कि फाइबर, फाइबर पे अगर फोकस कर लो, जब भी खाना मुंह में जा रहा है इसमें फाइबर है क्या, ये अगर हमारे दिमाग में बैठ गया ना तो फिर हम हर एवरी डे इज अ डाइट ओनली।
1: मेरे ख्याल से फाइबर की जगह अभी प्रोटीन ने ली है, क्योंकि हर कोई प्रोटीन के पीछे पड़ा है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन वेट लॉस को आता है। क्योंकि खाना बोले तो वेट लॉस करना या फिर वेट लॉस करने के लिए जो ट्राई करते रहते हैं उनके दिमाग में ये सभी भरा पड़ा रहता है कि डाइट करे या फिर ये डाइट ले ले, इसमें ये रहना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, ये सभी बातें सोचते हैं। बट जो हमारे अगर पेरेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो पौष्टिक अन्न जो खाया जाता है रोज का, जैसे आपने प्लेट के बारे में बताया, तो वो सभी उनके जमाने से मतलब खाते आ रहे थे और वो चाहते थे कि बच्चे भी वही खाएं। बट अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं तो हो नहीं पाता। बट अभी फिर से हमें पीछे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है,
0: थोड़ा एक लेवल पे। देखो हम हमारे परदादे के टाइम पे या दादा दादी के टाइम का लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो उनका 80% खाने जैसा उनका था, अगर हम अपने में 80% भी लाए ना, जरूरी नहीं है कि 100% उनके जैसे खाना जरूरी है। हमें ऑब्वियसली जो बाकी जो चीजें है जो बन रही है जो बिक रही है वो, और उनके भी बिजनेसेस जो है, थोड़ा बढ़ावा देंगे हम। बट हमारे सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है, कि अगर हमारे सेहत बनी रहे तो फिर बाकी सब कुछ 100% अच्छा रहेगा, राइट?
1: करेक्ट।
0: तो इसके लिए तभी मैंने बोला ना, एक मील, आप कोई एक मील कि जो भी आपका सबसे इजीएस्ट हो आपके लिए, कि अगर लंच आपका आपको लगता है कि अभी बहुत अनहेल्दी हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट तो हेल्दी खाता हूँ कि डिनर मेरा लाइट ही रहता है। एक और भी कहावत है ना कि आप ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल मैन और डिनर लाइक अ पॉपर बोलते हैं, कि मतलब सबसे जो हल्का खाना होता है वो रात का खाना होना चाहिए। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी या पुरानी आदतें भी ऐसी है कि सनसेट से पहले खाने का जो है, आजकल उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बोलते हैं ना, कि आप 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आप फास्ट करो, तो वो बहुत पौराणिक टाइम से हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है और जैसे अलग अलग रिलीजन्स में भी ये प्रैक्टिस है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। बट हम लोग रात के 12 बजे भी खाते हैं क्योंकि है अवेलेबल है, तो ये थोड़े प्रैक्टिसेस, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, कि कभी कभार कर लिया ठीक है, बट जो 80% ऑफ द टाइम आप जो हैबिट जो बिल्ड कर रहे हैं ना उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, कि हर वक्त का मेरा जो खाना है अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैं हेल्दी बनाती रहूं तो फिर 80% ऑफ द टाइम मेरा हेल्थ अच्छा ही रहता है। एक 10-20% इधर उधर 19-20 होता है, बट फोकस यही होना चाहिए कि ज्यादा ना खाए, भूख लगे तब खाए। हम लोग जैसे मैंने बोला ना, आते जाते हम लोग खाते रहते हैं, ये ना करें। मतलब गाय भैंस चरते हैं, ऐसा चरते रहते हैं और हम भी वैसे ही चर रहे हैं ना, कि आते जाते खाते, बोलना नहीं चाहिए, बट यही आदतें हैं, दीज आर हैबिट्स जो बोलते हैं, यही हैबिट को हमें तोड़ना है। थोड़ा बहुत ब्रेक लेके कि भाई अच्छा ठीक है लंच हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं है कि स्नैक खाए, चाय के साथ समोसे बिस्किट, ये नहीं जरूरी है, बट आदत हो गई है तो वो आदत ना। थोड़ा हेल्दी कैसे बनाए, एक फ्रूट ले आओ उस टाइम पे, तो चाय के साथ फ्रूट बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, बट ठीक है तो चाय थोड़ा कम कर लो, फ्रूट ऐड कर लो, तो यू नो थोड़े बहुत ये जो हैबिट्स है चेंजेस धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे ना तो एक हैबिट बन जाएगा। तो फोकस यही होना चाहिए कि हेल्दी हैबिट कैसे हम बिल्ड करें। हर बार जैसे मैंने बोला, हर बार खाना मुंह में रखते हैं सोचो कि ये फाइबर है, इसमें पौष्टिकता है, ये एक थॉट से अगर खाना खाए ना। दूसरा जो न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से बहुत सारे मैंने भी पढ़ा नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है और अब जाके बहुत सारा रिसर्च आ रहा है कि हम जिस तरह से खाते हैं सोचते नहीं है खाते टाइम, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है कि मतलब वहाँ टीवी चल रहा है या मोबाइल पे कुछ चल रहा है और हम लोग खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी चीजें जो है डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं और खाने पे फोकस निकल गया है। तो माइंडफुल ईटिंग जो है ना उससे भी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे आपने बोला मैं होलिस्टिक लेवल पे काम करती हूँ कि माइंड बॉडी कनेक्शन जो है वो बहुत पावरफुल है, तो खाना तो एक चीज है जो मेन फोकस रहता है, बट किस तरीके से खाते हैं, कितना चबा के खाते हैं। अक्षय कुमार बोलता है वो हर एक निवाला जो है वो 32 बार या 34 बार कुछ चबाता है, वो उतना सोचने का जरूरत नहीं है हमें, बट जो खाते हैं उसको थोड़ा अच्छे से चबा के खाए, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ मुंह से स्टार्ट होता है।
1: अच्छा,
0: इट डजंट डायरेक्ट, खाना इधर जाके पचता नहीं है, पचता है इवेंचुअली यहीं पे, बट जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ना वो अपने जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है।
1: ओके।
0: तो इसके लिए चबाना बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ऑटोमेटिकली हमारा जो खाने का क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को अब्सॉर्प्शन जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए वो अच्छे से वो अब्सॉर्ब कर सकता है। तो वो चबाने का, बचपन में मम्मियां बोलती थी ना या दादी बोलते थे, चबा चबा के खाओ अच्छे से। मेन रीजन ये है कि जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए, वो अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, असिमिलेट होता है। तो इसके वजह से ध्यान से खाओ कि खाते टाइम भले ही 10 मिनट के लिए खा रहे हो आप, आधा घंटा खाने की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट जो है सिर्फ खाने पे फोकस रखो कि भाई मैं खाना। और वो भी एक होता है कि आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो खाने को, तो जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो खाने को, उसको फोकस में रख के खा रहे हो ना, तो आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे बॉडी के लिए ये, क्योंकि यही जो चीज है जो मुझे अब आज बैठ के बात कर रही हूँ या जो भी है मेरा सेहत है, तो ये इसकी वजह से ही हो रहा है। तो इसको वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और वो जो एक माइंडफुलनेस जो बोलते हैं ना, वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा माइंडफुलनेस, तो इस माइंडफुलनेस के साथ खाने से थोड़ा उससे भी बॉडी में फर्क आता है, जिस तरह के अब्सॉर्प्शन होता है पौष्टिक आहार का जो है।
1: करेक्ट मैम, अभी तक हमारे प्लेट में क्या क्या खाना आता है वो कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट प्लेट में आने से पहले वो जहाँ से आता है उनके लिए भी काफी कुछ बदलाव करने चाहिए, तभी वो हमें अच्छा मिलेगा, वो भी एक पॉइंट है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो वहां तक हम जाना मतलब वो अलग ही टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी जो खाना हम घर पे लेके आते हैं, मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसको ज्यादातर पौष्टिकता में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में क्या बोलेंगे?
0: तो यू आर राइट, आजकल बहुत ज्यादा जो है हमें आइडिया भी नहीं है कि हमारा खाना किधर से आता है। पहले क्या, हम मार्केट जाते थे ऑलमोस्ट हर दिन या हर दो दिन में फल सब्जी लेके आते थे, ये रोज का एक एक्टिविटी होता था। इससे भी क्या है, यू नो, एक एक्सरसाइज जैसा हो गया कि हम मार्केट तक जाए लेके आए। मुझे भी याद है, मैं बचपन में अपने डैडी के साथ मार्केट एक ही बाजार लगता था, और वो बाजार में जाके उस हफ्ते का जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी चाहिए वो लेके आने का। बट अभी तो हम लोगों को मिलता है कि न्यूजीलैंड से कुछ कुछ मिल जाता है, चिली से एप्पल्स मिल जाते हैं, कहीं और से कुछ और मिल जाता है। तो पर्सनली मैं तो ज्यादा लोगों को बोलती हूँ कि जो लोकली ग्रो होता है, कि जो और सीजन कि जैसे आम का एक सीजन होता है, कुदरत ने आम को एक सीजन में इसके लिए बनाया है क्योंकि वो सीजन में हमारे लिए अच्छा है। वो सेब जो है वो ठंड के रीजन में ही ग्रो करता है और वो ठंड के मौसम में मिलता है क्योंकि वो उस मौसम के लिए अच्छा है। अब सेब हमें थ्रू आउट द ईयर मिलता है, हम कभी भी खा सकते हैं, बट उसको बॉडी में कैसे, अभी मैं तो बैठ के साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं बैठ के रिसर्च करूं कि मेरे बॉडी के अंदर समर में सेब खाने से क्या होता है, ये मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरा ये मानना है और एंड रिसर्च है कि लोकल जितना आप खाओ, कि जो सीजन में ग्रो कर रहा है जितना आप खाओ, और इतना ज्यादा है, वैसे तो बोलते हैं कि केमिकल फ्री खाना जितना खाओ उतना अच्छा है, बट केमिकल फ्री खाना मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी जो होता है, जैसे मैंने बोला कि जो कुदरत देता है उसको उस तरीके से खाने का। तो केमिकल फ्री ना हो तो भी इतना इंश्योर करो आप कि आपको जो लोकल और सीजन जो मिल रहा है, कि जैसे आम समर में ही खाओ, ना कि आम अभी भी मिलता है, कहीं ना कहीं आप जाओ पाकिस्तान से आम आते हैं, मलेशिया से आम आते हैं तो खरीद सकते हैं, बट ये सीजन नहीं है हमारे लिए खाने का, तो वो सीजन अनसीजनल जो है, जो सीजन में नहीं है, वो चीजें मत खाओ। अगर आप केमिकल फ्री खा सकते हो तो खाइए, बट जरूरी नहीं है कि उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप लोकल और जो रीजनल और सीजनल खाना है। इससे क्या होता है, जैसे आपने बोला, जहाँ ग्रो कर रहा है, जो फार्मर उगा रहा है, जो किसान मेहनत कर रहा है, लोकली खाने से उसको भी बेनिफिट होता है कि हम यहाँ की जो उपजाऊ जमीन में, यहाँ की जो उगाव है, उस चीज को खाने से यहाँ के किसान को बेनिफिट होता है। और जितना मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि जितना आप मार्केट में जाके फ्रेश लेके आओ और फ्रेश बना के खाओ उतना अच्छा है, बट लोगों के पास टाइम नहीं है, सबके पास बहुत कन्वीनियंस जो एक चीज हो गया ना, कि कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, पैकेट से उठा के कभी भी कुछ भी बना के खा सकते हैं, ये चीजें थोड़ा कम करके फ्रेश थोड़ा बना, भले ही बना के रख लो, बट जितना हो सकता है घर पे बना हुआ खाना खाए, और जो लोकल और रीजनल जो खाना है कि इंडिया में जो मिलता है वो ठीक है, मतलब जैसे सेब यहाँ पे तो ग्रो नहीं करता है, वो आते हैं हिमाचल जम्मू से, तो वो ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि समर में हम जाके कहीं और से कुछ कीवी लेके आए कि विटामिन सी के लिए कीवी खाना है। ग्वावा अभी सीजन में है, उसमें भी भर भर के विटामिन सी है। आंवला हमारे यहाँ पे काफी उगता है, उसमें भी भर भर के विटामिन सी है। नींबू है, तो जो लोकली मिलता है, जो नेचुरली हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स या जो फल और सब्जी और जो अनाज, ये हम लोग इंक्लूड करते रहेंगे डेली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा जो है ये बेल्ट अपना जो है कर्नाटका जो है, ये अपने मिलेट्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनली भी यहाँ पे रागी, जवार, जवार की बाकरी, रागी मुद्दे, ये सब खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट भी हो गया है कि हम जो पुराने जमाने के जो अन्न होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, मिलेट्स जिसको 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आल्सो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, सो ग्लोबली यू नो हर जगह मिलेट्स पे फोकस आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा हमारे खाने में भी डेली बेसिस पे थोड़ा मिलेट्स अगर इंक्लूड करें, राइस को थोड़ा शिफ्ट करके मिलेट्स ले आए वापस से, मतलब पुराने तरीके से खाने लगे, तो वो भी सेहतमंद बहुत रहेगा।
1: आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही यूजफुल होगा हमारे लिसनर के लिए, और उसमें हमें भी काफी नॉलेज मिला, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मनीषा, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू मैम। दोस्तों अभी तक हम सुप्रजा यस जी को सुन रहे थे, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है। जनरल न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है, जो हमें डेली रूटीन में हमें बहुत ही यूजफुल होने वाली है। कैसा था आज का एपिसोड मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके लिए नंबर है 9019904904, ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वर। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि समर वेकेशंस चल रहे हैं और देखते देखते ये वेकेशंस खत्म भी हो जाएंगे, तो क्यों ना हम हमारे बच्चों को थोड़ी इम्पोर्टेंस दे और थोड़ा सा क्वालिटी समय, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें, क्योंकि ये जो समर वेकेशन का पीरियड होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है सभी बच्चों के लिए। क्यों ना हो, हम भी जब छोटे थे तब पूरे साल बेसब्री से हम हमारे समर वेकेशंस का इंतजार करते थे और हमेशा ही हम ये सोच कर रखते थे कि वेकेशंस आएंगे तब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इनके घर जाएंगे, उनको मिलने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये सारी एक्टिविटीज करेंगे। तो जब हमें इतना इंतजार हुआ करता था तो हमारे बच्चों को भी क्यों इनका इंतजार ना हो। तो उनका जो स्पेशल टाइम अभी चल रहा है उसे और स्पेशल बनाते हैं और कुछ एक्टिविटीज उनके साथ करेंगे, हम अपने बच्चों को गाइड करेंगे कि वो अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें। इसी विषय पर बात करेंगे, पर उससे पहले प्यारे प्यारे गाने सुन लीजिए। शुरू करती हूँ आज का शो और सुनाती हूँ शुरुआत के कुछ प्यारे गाने। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

वेलकम बैक दोस्तों, वी रिलैक्स में मैं आरजे स्वरा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम समर वेकेशन की अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही कोविड आकर गया, हमारे बच्चे बहुत ही डिजिटली एडवांस हो गए, ऑनलाइन स्कूल अटेंड करने लगे, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करने लगे और बहुत सारा काम उनका स्क्रीन के सामने होने लगा। इसी के साथ हमारे बच्चे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के भी आदि हो गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बुक्स को रीड करना और ऑडियो बुक्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियो बुक्स यानी किताबों को सुनना उन्होंने शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इस एडवांसमेंट की वजह से बुक या किताबें फिजिकल किताबें पढ़ना कहीं कम हो गया है। तो अपने बच्चों को उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश करें, उनके लिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से एक दो चार प्यारी प्यारी किताबें लेकर आए गिफ्ट के तौर पर, तो वो खुशी खुशी पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि गिफ्ट है वो मना नहीं करेंगे। और आप भी क्यों ना उनके साथ बुक्स पढ़े। किताबों की तरफ उनका ध्यान फिर से केंद्रित करने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे। आगे बढ़ते हैं शो में और लेती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनते रहिए KLEV 90.4 FM।

कोविड का और लॉकडाउन का और एक फायदा हमको हुआ कि हम फैमिली मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। हम बहुत सारे इंडोर गेम्स जो हम हमारे बचपन में खेला करते थे, जिनको हमने बहुत सालों से बंद करके किसी कोने में अलमारी में रख दिया था, उनको हमने सब बाहर निकाला और फिर से हम बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स खेलने लगे अपनी फैमिली के साथ। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, हमने वो फैमिली टाइम स्पेंड करना कम कर दिया है। तो क्यों ना वो फैमिली टाइम हम फिर से स्पेंड करें, फिर से रिलीव करें और अपने बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स एंजॉय करें। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो हमने एक कोने में फिर से दबा दिए थे वो सारे बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स निकालने हैं और अपने बच्चों के साथ एक समय फिक्स करके दिन में एक आध घंटा खेल लेना है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। अगर आपको लाइट हल्के फुल्के गेम खेलने हो तो सांप सीढ़ी और उस लूडो जैसे गेम्स आप खेल सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना हो तो बिजनेस गेम मोनोपोली खेल सकते हैं। उससे भी ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग बनाना हो तो चेस खेल सकते हैं। और उसके अलावा भी कार्ड्स है, ऊनो है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। आप अपने बच्चों के साथ ये सारे गेम्स एंजॉय कर सकते हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। फिलहाल शो में आगे बढ़ती हूँ, हम मिलते हैं कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLEV 90.4 FM।

बी रिलैक्स में आरजे स्वरा आपका फिर से स्वागत करती है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और लेकर आई हूँ आपका फेवरेट शो बी रिलैक्स। वेकेशंस में अपने बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज करें इसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। तो हमें ना नई नई स्किल्स सीखनी है, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, क्ले आर्ट है, या ऐसी कोई चीज जो आपके बच्चों के इंटरेस्ट की हो, उसे इनकरेज करना है कि वो स्किल वो सीखे। उसके लिए वो उसके क्लासेस ढूंढिए। अगर क्लासेस आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन भी आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। उसे मोटिवेट कीजिए, हो सके तो आप भी उसके साथ क्लास अटेंड कीजिए और साथ में सीखिए। देखो, अपने बच्चों के साथ कोई क्लासरूम शेयर करना ये एक बहुत अलग अनुभव होता है, क्योंकि उसकी और आपकी एज में बहुत डिफरेंस है, उसके और आपके लर्निंग कैपेसिटीज में बहुत सारे डिफरेंस है। पर जब आप दोनों मिलकर कोई चीज साथ में सीखोगे तो आप एक दूसरे को और ज्यादा कोऑपरेट करोगे। जब आपको पता है कि ये आपका बच्चा इस चीज में कमजोर है तो आप उसे सिखाओगे कि इसे बेहतर कैसे बनाते हैं, और जब आपका बच्चा देखता है कि उसके माता पिता किस चीज में कम पड़ रहे हैं तो वो अपने माता पिता को भी मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है और सिखाता है, तो इससे भी आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। एक्चुअल में ये तो समर वेकेशन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जरिया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड है ना, उसे और स्ट्रांग बनाने का। तो इस मौके को बिल्कुल ना गवाएं और अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम, हॉलिडे टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ गाने आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप फटाफट उनको सुनकर लौट कर आइए। मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रही हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा, और आप सुन रहे हैं बी रिलैक्स ओनली ऑन KLE वेणुध्वनि।

पूरे साल के दौरान आप अपने बच्चों के साथ बाहर कम जाते हैं, क्योंकि या तो आपके काम होते हैं या फिर फेस्टिवल्स आते हैं या फिर बच्चों की एग्जाम्स होती है। ऐसा कम मौका होता है जहाँ पर आपका और आपके बच्चों का शेड्यूल मैच हो जाए और सबको एक साथ में छुट्टी मिले और आप कहीं घूमने जा सके। पर समर वेकेशन में बच्चों के पास कम से कम महीना डेढ़ महीना तो टाइम होता ही है कि वो फ्री है, तो अपनी छुट्टियां देखे आप। लॉन्ग वीकेंड अगर आ रहा हो या दो तीन दिन की छुट्टी आप निकाल सको तो एक अच्छा सा मिनी वेकेशन, या अगर ज्यादा वक्त निकाल सको तो लंबा वेकेशन भी लीजिए और फैमिली मिलके कहीं अपने घर से बाहर, शहर से बाहर जाएं, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करें। जब हम हमारी रूटीन सेट ऑफ लाइफ से बाहर निकलते हैं तब हमको खुद को बहुत अच्छा लगता है और अपने रूटीन में वापस जाके बहुत मेहनत करने के लिए ताकत मिलती है। तो ये जो ब्रेक है ना, वो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। वेकेशन लेने का आपको खुद को भी फायदा होगा, आपके बच्चों को भी फायदा होगा और आपकी फैमिली को भी फायदा होगा। भाई फायदे ही फायदे है, बस एक ही नुकसान है कि खर्चा होता है। तो उसके लिए पूरे साल में अच्छे से प्लान करके अपने वेकेशन के लिए एक बजट तैयार कीजिए ताकि आपको वो खर्चे की चिंता ना करनी पड़े। फिलहाल मैं आपके एंटरटेनमेंट की चिंता करते हुए आपको कुछ गाने सुना रही हूँ। आप लौट कर आइए, यहीं पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ।

कई बार ऐसा होता है कि आजकल की फैमिलीज में आप पेरेंट्स अपने अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर पे जाते हैं, उनको मिलने जाते हैं, कोई आउटिंग्स प्लान करते हैं, और बच्चे अपने हिसाब से अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद करते हैं। पर क्यों ना ऐसा किया जाए कि बड़े और बच्चे दोनों मिलकर कहीं मिलने का प्लान करें। आपके कोई ना कोई ऐसे कॉमन फ्रेंड्स तो होंगे ही जिनके बच्चे भी आपके बच्चों के फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के साथ जब आप बाहर जाते हैं तब आप फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के साथ 2-in-1 टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ऐसा प्लान कीजिए ताकि वो अपने फ्रेंड्स और अपने कजिन्स अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। अगर आप बिजी है तो बच्चों को भेज दीजिए, पर सबसे मिलना जुलना, बातें करना, अपनी बॉन्ड बढ़ाना ये बेहद जरूरी है। सोशलाइज करना सिखाना अपने बच्चों को बहुत जरूरी है। तो प्लान to meet all your friends and family and cousins in this vacation. सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। आप सुन रहे हैं Be Relax, only on KLE वेणुध्वनि।

समर वेकेशंस में अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना मत भूलना। ये लाइफ स्किल्स बच्चों को स्कूल में भी सिखाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो आप स्कूल में नहीं सिखा सकते। समझो आपके स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है तो बच्चे स्विमिंग करना नहीं सीखेंगे, और स्विमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। इसी के साथ खाना पकाना, कुकिंग, बेसिक कुकिंग हर एक इंसान को आनी चाहिए। तो इस वेकेशन में अपने बच्चों के साथ फैमिली कुकिंग टाइम को एंजॉय कीजिए और उनको कुकिंग सिखाइए। इसी की तरह बहुत सारी और लाइफ स्किल्स है जो सीखना बेहद जरूरी है, तो उसके लिए वक्त निकालिए और अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए। नई आदतें लगाना बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे अपने स्कूल के रूटीन में जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का, होमवर्क का, दूसरे क्लास और एक्टिविटीज का प्रेशर होता है, एग्जाम्स का प्रेशर होता है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स का प्रेशर होता है। तो इस समय में जब स्कूल शुरू होती है तब आप कोई आदत नहीं डाल सकते, उनका शेड्यूल आप चेंज नहीं कर सकते। पर अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक हैबिट है जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में हो, तो ये बिल्कुल सही समय है समर वेकेशन का, जिसमें आप नई आदतें अपने बच्चों को लगा सकते हैं, या कम से कम उनको पुश कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो नई आदतें अपनी लाइफ में ले। और जब उसकी शुरुआत होगी समर वेकेशन में तो उनके पास काफी समय होगा, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वही आदतें अपनी स्कूल लाइफ में भी वो कैरी कर सकते हैं, अपने रेगुलर लाइफ में भी उसे वो अपना सकते हैं। तो अगर कोई नई आदत लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है समर वेकेशन का।

वीकनेस है, जो कमजोरियां हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए आपके पास अभी काफी समय है, तो इस समय का उपयोग कीजिए और वो जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए। एक चीज याद रखना, अपने बच्चे को बिल्कुल समझा बुझा के, बहला फुसला के अच्छी तरीके से हैंडल करना सीखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के तुम इस चीज में कमजोर हो, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करो, ऐसा अगर चिल्लाओगे तो वो काम नहीं करेगा। यू शुड नॉट हाईलाइट दैट इट्स हीज और हर वीकनेस, यू शुड हाईलाइट दैट इट्स आर वीकनेस। ये हमारी कमजोरी है, पेरेंट्स और बच्चों की दोनों की मिलकर ये कमजोरी है और इसके ऊपर हमें काम करना है मिलकर। जब आप सिर्फ हाईलाइट करोगे कि तुम्हारे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें टेबल्स नहीं आते, तुम टेबल्स लर्न करो, तो वो बच्चा बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएगा और उसे कुछ भी करने का मन नहीं होगा और वो आपसे दूर होने लगेगा। पर अगर आप ऐसा कहोगे कि चलो ना यार, हमारे टेबल्स अच्छे नहीं है, हम दोनों मिलकर टेबल्स लर्न करेंगे, तो वो बच्चा खुशी खुशी आपके साथ टेबल्स लर्न करेगा। तो उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमजोरी है, उसे सिर्फ उसकी कमजोरी है ऐसा हाईलाइट मत करना, उसको एक फैमिली प्रॉब्लम या फैमिली वीकनेस की तरह रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश अगर करोगे तो वो अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आपको आपकी कोई वीकनेसेस पे काम करना है तो आप बच्चों की मदद भी ले सकते हैं। किड्स आर अ वेरी गुड टीचर, कभी ट्राई करके देखना अपने बच्चों से कुछ सीखने की कोशिश करना। वो यू नो एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपको वो पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे और उसका मजा ही कुछ और होता है।

इस समर वेकेशन में अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीजें सिखाई है जो स्कूल में रेगुलर लाइफ में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में कॉमन एक्टिविटीज होती है, ड्राइंग होता है, आर्ट एक्टिविटीज होती है, म्यूजिक होता है, डांस होता है। उसके अलावा जो चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग भी शायद कुछ स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर यू नो कम्युनिकेशन एंड मीडिया है या फिर मार्शल आर्ट्स है या ऐसी कोई स्किल्स जो रेगुलर उसके स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वैसी स्किल्स आप समर वेकेशंस में सिखाइए। जो कॉमन स्किल्स है जो हमेशा ही स्कूल में सिखाई जाती है, वही अगर आप समर में सिखाओगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो स्कूल में भी सीख ही रहा है। तो ऐसा कुछ सिखाओ जिससे उसे कुछ नया सीखने को मिले, और नई चीजें ना बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है। वैसे समर वेकेशन में करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमारे जमाने में तो हम आम तोड़ा करते थे, हमारे जमाने में तो हम ये किया करते थे, वो किया करते थे। सिर्फ इतनी स्टोरीज बोलोगे तो उतना काफी नहीं है, आपको खुद को पार्टिसिपेट करके अपने बच्चों के साथ समर वेकेशंस को फ्रूटफुल बनाना है, एंजॉयबल बनाना है और मेमोरेबल बनाना है। इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और इस समर वेकेशन में अपने बच्चों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

सोनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।